हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाहिगुरु परमात्मा

काल सोरत है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुझे आपे शिष्ट सजिया आपे सब इको शब्द वर्तदा जो करे सोहोई वड्याई गुरमुख दे प्रभ वड्याई

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोरी है बाही जनाजी पकड़ी है सिर दी जय बाही ना छोटी है असी जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी है सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

0: नगन फिरत जो पाये जोग,
1: बन का मिरग मुकत सब होग।
2: गुरबाणी बार बार समझाए कह रहे ने पासा, जे इस तरह जोग जिस परमात्मा इस तरह मिल जाता ते मिरग भी इस तरह नंगे ही जंगल दे विच घूम रहे ने फिर रहे कहंदे ने,
1: नगन फिरत जो पाइए जोग, वन का निरग मुक्त सब होग।
2: ते फिर उन्हानु भी मुक्ति मिल जाती, पर जोग किस तरह कमाओ

0: la chapiu hajati ma karaju paza ai palesan me pucha kya lage badi lambi katha mata nandi ha
1: sun harnakshna da ik bada shaktishali raja si unne bhagwan di bhakti karke ik vardhan liya ki na dine marega na rati marega na andar marega na bahar marega na manukh ko lo na kisi janwar ko lo
0: se
1: bhagwan da vardhan leke o aap hi bhagwan ban baitha us raje da ik puttar si pralhad pralhad ne apne pita nu bhagwan manan to inkar kar dita
0: se
1: क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तप ते थम ना जथे पान दा हुकम दिता ते प्रहलाद दिल विच आवाज आई पाले तप ते थमा नु जफिया आपके तनु रणम रख लो प्रहलाद ने थम ना जफी पाले पर ओदा वाल ते निंगा ना होया गुस्से विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां भगवान दा जाप करांगी
2: मेरी मेहनत मेरी और आप पुठे पार पड़े जा रहे आज तो बात खेल करी ऐसी गल की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरान के सब लोग फुल जाएंगे

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

बेनती करते हैं दासा के प्रति गरीब साहब जी ने इतना कुछ कह दिता है कि दास इस गल योग ही नहीं दास इस गल के कुकर हैं जो कुछ भी संगत ने जोड़े मिले है दासा ने आज के पेश करना किया है ऐनी गल कह के दूजा शब्द शुरू करिए हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता जो कुछ भी है सारे सारा शब्द का प्रताप है साढ़े वर्गे कुकर गलिया तुरे फिरते ने कोई भी नहीं पुछता शब्द

जिन्हां नूं दुश्मन भी अपने प्यारे लगदे हो। भाई कन्हैया, ना अपना ना दुश्मन,

जिनू गुरु कल की दर पातशाह ने वो बख्शिश कीती कि जिथे भाई करैया तू पानी पिलाउना आ मलम भी फटा दे ला दिया। आ सिख दा प्यार है, आ सिख दी भावना है, जिसनू बेगाने भी अपने लगते बस वो असल विच सिख है, पर होवे कोई भाई करे।

जिथे झाड़ू की सेवा करता, जल छकाउण की सेवा करता, उथे लंगर दियां लकड़ां भी लिया, जंगलों विचों लकड़ां कटनिया, सिर ते चुकनिया, लंगर विच लिया के सेवा करनी। पर अज इम्तिहान का परचा पै गया, भाई मांझ जी लकड़ां तां कटियां बन्नियां, सिर ते चुक लिया, लकड़ां नूं सिर ते चुक

अपना आप गुरु तो निशावर करके पा लिया। आओ भाई आपा भी जे गुरु दे सिख हां ते फिर भाई मंझ वांगू किते गुरु नाल प्यार कर लेंगे, गुरु तो वारी हो जाइए। ताई का गुरु बख्शिश करेगा किते मन नीवा हो जावे, मत उची हो जावे, एहो जा हिरदे विच प्यार जाग पवे ते फिर भाई गुरु तो सदके गुरु भी बख्शिश करेगा, उस सिख नू गल ना लवेगा। आओ भाई मंझ दे गीत गा रहे हैं, डिग पया पर पंड ना सुटी, खड़ा अडोल वो सिर ते रखी, सतगुर आए बचाओ। आओ वे सतगुरां ने बांह फड़ ली, बख्शिश कर दिती। जे भाई मंझ ते बख्शिश हो गई, आओ भाई कि साढ़े ते भी बख्शिश हो जाए, कि आपा भी भाई मंझ वांगू गुरु की सेवा विच लग जाइए, ते फिर साडा लोक

जीव जंत उस पानी अंदर रहने वाले हैं। फिर तेन उन्हों का पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा, इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं कितना पानी, ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा।

0: कर स्नान सिमर प्रभ अपना।
1: जीव अमृत वेले उठ ते साहब आखदे ने अमृत वेले उठ के स्नान कर। निरा स्नान ही नहीं करना, इस्नान करके उस परमात्मा अकाल पुरख की भगति कर, उस प्रभु का सिमरन कर। फिर प्रभु का सिमरन करेगा तो होगा कि कर

0: ある。
1: कैसा ख्याल?
0: जेड़े सिर साई दे अगे निवदे नहीं, जेड़े मन चुकदे नहीं, जेड़ी रसना नाम जपदी नहीं,
1: कहिंदे रसना नूं भी कट दे,
0: ते जेड़ा सिर चुकदा नहीं परमात्मा दे अगे कहिंदे सिर भी कट दे।

अमृत वेले उठे, इशनान करके सिमरन विच लग जाए। बड़े बड़े लिखारियों ने बहुत सुंदर ख्याल लिखे, अमृत वेले मनुख जद उठद सुंदर हवा चल रही होंगी, रमनीक नजारा होंगे, तारे टिम टिम करते होंगे, मन खिलिया होंगे, हवा राणी दूर दूर तो खुशबुआ लैके चोलियां पहर पर लुटांदी है, ते ओ अकाल पुरख अंतर जामी अपनी दरगाह विच बैठा चोलियां पर पर के जीवां दी चोली विच नाम दी दात पाउंदा। ते असी उस वक्त सुते हुंदे, करिए अरदास सतगुरु कृपा कर ऐसा जीवन सानू भी बख्श दे कि अमृत वेले असी भी उठ के तेरी ओ दात हासिल कर सकीए जो सारे मनुख कर रहे हैं। ऐसे मनुख हैं विरले विरले, पर असी भी उन्हां दे विच शामिल हो जाइए। गुरु दरबार विच आए हां ते बेनती करिया करिए सतगुरु की कृपा करो असी भी ऐसा जीवन बना सकीए। कैसा कर

इथे शिर्क किंवा व्याकरण बारीक प्रकार व्याकरण फुलावून होती आज्ञा प्रकाश मकडू आणि अशुद्धा बोलावून आपने स्थान लोगों के मैं आगे से निरक्षण के बाहर सुखाने को दूर करने पर खास कार्यरत करने उलट कर के मां पंचदाई बाबा जी नगर बैठे भक्तों ने वाहे गुरु का सुसा